ये जाएंगे। दरियाओं के किनारों से पानी बह निकलने के जुमरे में फिलवक्त पूरे जापान के 400 से ज्यादा बड़े नामजद दरियाओं का अहाता किया गया है। दीगर दरियाओं के लिए सैलाब के खतरे की सतह का ऐलान शदीद बारिश के जुमरे के तहत किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात से मुतमिन नहीं हैं और दोनों मुल्क अभी तक किसी माहदे तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तेहरान अब इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पर होते हुए मुज़ाकरात कर रहा है। ट्रंप ने बुध को काबीना के इजलास में इस मामले पर बात की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो हमें ऐसी चीज़ें देना शुरू कर रहे हैं जो उन्होंने हमें देनी हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो मेरे बाएं तरफ बैठा आदमी उन्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। ट्रंप वजीर दिफा पीट हैगिसेथ का हवाला दे रहे थे। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज ईरान के कंट्रोल में नहीं होगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि सिफारतकारी हमेशा पहला इंतखाब होती है, तहम उन्होंने साथ ही एक वार्निंग भी दी। उन्होंने कहा, मेरी दानिश में कुछ पेशरफ्त और कुछ दिलचस्प चीज़ें हुई हैं, और हम अगले चंद घंटों और दिनों में देखेंगे कि पेशरफ्त कहाँ की जा सकती है। मैं सबको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर सिफारतकारी से काम नहीं चला तो आपके पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। जनाबे सदर, आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इससे कबल ईरान के सरकारी टेलीविजन ने अमेरिका के साथ मफाहमत की याददाश्त के मुसव्वदे की खबर दी थी। नशियाती इदारे ने कहा था कि इसे एक इब्तदाई गैर सरकारी दस्तावेज मिली है जिसमें लाहे अमल का खाका मौजूद है। मुसव्वदे में कहा गया है कि ईरान एक महीने के अंदर आबनाए हुर्मुज में तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल कर देगा और गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद को जंग से पहले की सतह पर वापस लाएगा। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर बहरी जहाज़ों के साथ मुदाखलत को रोकने और ईरान की बहरी नाकाबंदी को हटाने समेत दीगर इकदाम भी करेगा। इस मुसवदे में फौजी बहरी जहाज़ों का अहाता नहीं किया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, तेहरान जहाज़ों का मुआयना कर सकेगा और फीस वसूल करेगा, और ईरानी हुक्काम अम्मान के साथ मिलकर इन इकदाम को मरबूत करेंगे।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 28 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान में बृहस्पतिवार दोपहर से आपदा की सूचना देने वाली नई प्रणाली शुरू हो गई है ताकि जनता को जोखिम के स्तर के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दी जा सके। पिछली प्रणाली में बहुत अधिक प्रकार की जानकारी थी और शब्दावली में एक रूपता का अभाव था, जिसके चलते उसकी आलोचना की गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी और भूमि मंत्रालय ने इसमें संशोधन किए ताकि लोग खतरे के स्तर का आसानी से आकलन कर सकें। नई प्रणाली में नदियों में बाढ़, भारी वर्षा से आने वाली बाढ़, भूस्खलन और तूफान के कारण समुद्री जलस्तर बढ़ने जैसी आपदाओं के 4 प्रकारों के लिए 1 से 5 का सतर्कता स्तर निर्धारित किया गया है। स्तर 5 आपात चेतावनी है, जबकि स्तर 4 तत्काल चेतावनी, स्तर 3 चेतावनी, स्तर 2 सलाह और स्तर 1 प्रारंभिक सलाह है। आपदा के प्रत्येक प्रकार के लिए सतर्कता स्तर जारी किया जाएगा। नदियों में बाढ़ की आपदा की श्रेणी में फिलहाल जापान भर की 400 से अधिक नामित बड़ी नदियों को रखा गया है। अन्य नदियों में बाढ़ के जोखिम की जानकारी भारी वर्षा संबंधी आपदा के तहत दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का

कहना है कि वे ईरान के साथ शांति वार्ता से संतुष्ट नहीं हैं और अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ईरान की बातों में दम नहीं रहा। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में ट्रंप ने इस मामले पर बोलते हुए कहा, मुझे लगता है कि वे हमें वो देना शुरू कर रहे हैं जो उन्हें देना चाहिए, और अगर वे ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो मेरी बाईं ओर बैठे श्रीमान उन्हें ख़त्म कर देंगे। ट्रंप का इशारा रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ की ओर था। ट्रंप ने बल देते हुए कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण नहीं होगा। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि कूटनीति हमेशा पहला विकल्प है, लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी। रूबियो ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ प्रगति और रुचि दिखाई दी है, और हम आगामी कुछ समय और दिनों में देखेंगे कि प्रगति कहाँ हो सकती है। मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, राष्ट्रपति महोदय, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ये विकल्प नाकाम रहा तो आपके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। इससे पहले ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने अमेरिका के साथ होने वाले समझौता ज्ञापन के मसौदे पर खबर देते हुए कहा था कि उसे समझौते की रूपरेखा प्रस्तुतकर्ता एक शुरुआती और अनौपचारिक दस्तावेज हासिल हुआ है। मसौदे में कहा गया है कि ईरान एक महीने के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक पोतों का आवागमन बहाल करेगा और जहाज़ों की संख्या को संघर्ष पूर्व स्तर पर वापस लाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका भी ईरानी बंदरगाहों पर जहाज़ों के आवागमन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और समुद्री नाकाबंदी हटाने सहित कई कदम उठाएगा। इस समझौते में सैन्य पोत शामिल नहीं हैं। मसौदे में कहा गया है कि जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण कायम रहेगा, वो जहाज़ों का निरीक्षण करेगा, शुल्क वसूलेगा और इन उपायों का समन्वय वो ओमान के साथ करेगा।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। फिलीपींस के सैन्य प्रवक्ता ने आशा व्यक्त की है कि घातक हथियारों के निर्यात की सैद्धांतिक अनुमति देने का जापान का निर्णय फिलीपींस को अपने द्वीपों की बेहतर रक्षा करने में मदद करेगा। बृहस्पतिवार को टोक्यो में जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के बीच शिखर बैठक से पहले मंगलवार को पश्चिमी फिलीपींस सागर के लिए फिलीपींस सशस्त्र बल के प्रवक्ता रॉय विंसेंट त्रिनिदाद ने एनएचके से बात की। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों को बलपूर्वक बताते हुए कहा कि चीन स्कारबोरो शोल और अन्य जगहों पर अपनी उपस्थिति को सामान्य बनाना चाहता है। गौरतलब है कि फिलीपींस और चीन दोनों ही इस शोल पर संप्रभुता का दावा करते हैं। अप्रैल में जापान ने हथियारों के निर्यात पर निर्णय लिया था, जिसके बाद फिलीपींस को जापान के आबुकुमा श्रेणी के विध्वंसक पोत और अन्य रक्षा उपकरण हस्तांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि इससे फिलीपींस की सेना के आधुनिकीकरण को गति मिल सकती है और द्वीपों की रक्षा करने की उसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि रक्षा उपकरणों का ये हस्तांतरण अस्थिरता पैदा करने की बजाय यथास्थिति में परिवर्तन की एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ क्षेत्र को अधिक स्थिर बनाएगा। जापान सरकार के अधिकारियों ने रूस का दौरा किया है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान संवाद माध्यमों को खुला रखने और जापानी कंपनियों की परिसंपत्तियों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। टोक्यो ने यूक्रेन पर आक्रमण के विरोध में मॉस्को पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। अर्थ मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सोमवार को रूस पहुंचे। उन्होंने रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय और उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने रूस के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन सहित व्यापार जगत के साथ बैठकें भी की। जापान और चीन की कंपनियों ने अगले साल जापानी बाजार में एक मिनी ईवी लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। इसमें शामिल 5 कंपनियों में चीन की चेरी ऑटोमोबाइल और जापान की वाहन कलपुर्जे विक्रेता कंपनी ऑटोबैक्स 7 शामिल हैं। पहले मॉडल में चेरी कंपनी की तकनीक का उपयोग करते हुए चालक सहायता फीचर्स शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस संयुक्त उद्यम की योजना चीन से वाहनों का आयात कर उन्हें ऑटोबैक्स के राष्ट्रव्यापी स्टोर नेटवर्क का उपयोग करके जापान में बेचने और बिक्री के बाद रखरखाव सेवाएं प्रदान करने की है। अगले साल पहले मॉडल के लॉन्च होने के बाद साझेदारों की योजना 2029 तक 3 अतिरिक्त मॉडल लॉन्च करने की है। ऑटोबैक्स के अधिकारियों का मानना है कि जापान में मध्यम से दीर्घावधि में ईवी मॉडलों की मांग बढ़ने की संभावना है और उन्हें उम्मीद है कि ये संयुक्त उद्यम आय बढ़ाने में मदद करेगा। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

ये है NHK World Japan की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK World Japan।